सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर काहे मन पाव करिया उड़े उड़ आवे सै कोसा।

नाम समाया। तुम आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट।

रहाहु जापताप संयम धर्मना कपाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा जब तब संयम धर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो भाच बेनती चापई अमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेव

सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो नितुड़ ध्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक विशन महेश।

किन कहिया क्यों देखिया भाई करता एक अकथ। गुरु गोबिंद सलाहिया भाई जिस ते जापै तथ।

इतनी सेवा प्रवान करने कीर्तन करते हैं प्रभु दी माफी बख्शनी आहुन भाई साहब भाई गुरदीप सिंह जी दमदम टकसाल टकसाल वाले आप जी जो विशेष शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं शहीदी हफ्ता इस संबंध इतिहास में जोड़नगे उन्होंने पासों प्यार से सम्मन करो जी। आने वाले शनिवार सैन फ्रांसिस्को विखे हर साल की तरह जून 1984 के घलूकर समूह शहीदों के संबंध पातशाह रैली निकल रही है सवेरे 10 बजे आप जी ने परिवार साहब हाजरी भरनी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

उसने अगे लाइया सी सरकारा वेर दिया कौन करूगा रिसा पिंडरा वाले शेर दिया।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

पुराण सिमृत सुधाख्यर किन्ने राम नाम आख्यर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एका दरस्तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसा

दर्दुकपञ्जना कटकटनाथयनाथ सर्वतुमारी आयो नानक के प्रभसातष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दला त केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरा हर को नाम कोट पाप पर हरा गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंद ना पराय हर का नाम जपत निस्तराय अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्ग ए जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूट नहीं कोट लगबाही नाम जपत पार पराही अनक बिघन जाए संगार है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन्म

तैनान घर अमृत बरख भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम अर्घा नाम दास की ओट अर्घे नाम द्रे जन कोट

सुध गाय काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पतद बह मूच बहुत सियान जमका पाहो ब्यापे अनक जतन कर त्रिशन्ना त्रापे पेख अनेक गन्ने बुझै कोट पाप दुर्गे नहीं सज्जै छूट सनाई ऊब पयाल मोह ब्यापे माया जाल अमर करतूत सगली जम डान गोविंद भजन मिन दिल नहीं मान हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए।

पतजाए अष्टपदी। दस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त्रकार मिखोड़ गवावे। एक बीना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहू कहा करे।

बिन सिमरन दिन रैन ब्रिथा बिहाए मेघ बनाजो खेती जाए गोविंद भजन मिन मृथे सब काम ज्यो कृपन गे नरार धाम तन तन तेजन जे घट बस्यो हर नाम नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत मनी प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रबीन बाहर भेखना काहू भीन अवरभ देसे आप ना करै आवत जावत जरमै मरै जिसके अंदर बसे निरंकार तिसकी सीख थरा संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मानै आपे आप आव करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियानम सगल ते रहत सब के जाने आत्म की रहत जिस भाव तय लड़दाए थान थरंतर या समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जब नान खरी सरोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मनंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आड़ भैर सिमरो सरसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ध्यान जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कतबर लुभावे जे प्रसाद सुख सेज सोईज मनाठ पैर ताका जस गावीज जे प्रसाद तू सब कहु माने मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे मान पावे नानक पत सेती कर जावे जे प्रसाद आरू कंचन देही लिबलावत सराम सनेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके है जे प्रसाद तुझको ना पहुँचाए मन साह सा सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे जे प्रसाद आ भूखन पहरिजा मन ते सिमरत क्यों आलस कीजै जे प्रसाद असवहस्त सवारी मन दिस प्रभु को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरे रख है जे प्रसाद करे पन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका त्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुप्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सुप्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरप्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद वेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू

शुभ नाम आप गावा हे शुभ हर गुण गाव। प्रभु गिर भाते हुए प्रकाश, प्रभु दयाते कमल विगास। प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सुय, प्रभ दयाते मत उत्तम होय। सर्वनिधान प्रभ तेरी मया, आपो कशु न किन्हू लया। जित जित लाभो।

साधक संग कलुकत हराय, साधक संग नरक पर हराय, साधक संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछर तर मेला, जो इच्छा है सोई फल पावै, साधक संग ना वृथा जावै, पार ब्रह्म साधृत बसै, नानक उदरै साध सुन रसाय, साधक संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाव, साधक संग ना मनते बिसरै, साध संग सर पर नस्तराय, साधक संग लगे पर मीठा, साधु कह संकट कर डीठा, साध संग भया गयकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग, साध की महिमा भेद ना जाने, जेता सुने तेता बखियाने।

सुनो परम गत भावे भगवती भगवंत भगत का रंग सकल त्यागे दुष्ट का संग अंत बिंसे सकला परम कर पूजे सकल पार ब्रह्म सास संग पापा मल खोवे तस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करै नतनीत मंथन अर्पय बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।

राष्ट्रपति, कई कोट भये पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट बान प्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम त्यामे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगातम ने कोहर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करहे, कई कोट माया सर्व माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाए, कई कोट पाथर बिरखन बजाए, कई कोट पवन पाणी बै संतर, कई कोट देह सपू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान अविंदर सिर शतर, सगल समगरी अपने सूत धारे, नानक जे जिस भाव है तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सात, कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र, कई कोट की रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की ये चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रे सुगर मृगाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानका अलप त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जुन्नी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट की है तरमंद, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिलब लागी, कई कोट प्रभ को खो यंथे, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न, नानक तेजन तेजन सदा धन धन,

राजा को भिखारी निज का साजा, कभू आप कीर्त में आवे कभू भला भला कहावे, ज्यो प्रभु राखे तभी रहे गुर प्रसाद नानक सच कह, कभू हुए पंडित करे बखियान कभू मोहन धारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान कभू सिसाधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्तंग हुए जिया अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभावे तमें नचावे, जो तिस भावे सोई हुए नानक दूजा वरना कोय, कभू सा संगत पावे उस स्थान ते बाहर न आवे, अंतरवे ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश, मंथन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म कह संग, ज्यो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कह सतगुरबान सलोक, सुखी बस मसकीनिया आप निवार तरे, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंदर राज विमान सो नरक पाती अवसमान, जो जाने मैं जो बनवंत सो विष्टा का जंत, आप जो कर्मत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे, धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान, कर कृपा कहर दे गरीबी बसावे नानक ईहा मुक्त आगे सुख पावे, धर्मंता कर

मुख संगा दुखी सदा अपवित संगा दुखी किसे का नहीं मित संगे दुखी को डाल लागे संगे दुखी को सब त्याग संगा दुखी मां अहंकारी संगा दुखी सदा भिकारी संगा दुखी जन्मय मरय संगी दुख ना सुख ते ठराय संगे दुखी को राही ठाहू नानक सं भावे तलय मिलाए संगा दुखी अदबीते टूटाए संगा दुखी किते काज ना पहुंचाए संगे दुखी को ध्यान भरमाइय संगा दुखी उजड़ पाइय संगा दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किश नाहे आपन बीजा पहे खाहे संगे दुखी को अवरना राखन हार नानक संत भावे तलय उभार संगा दुखी एवं बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संगा दुखी भुखा नहीं राजे जो पावक इंदन नहीं त्रापै संगा दुखी छुट अकेला जो बुआड़ तिल खेत माए दुहेला संगा दुखी धर्म ते रह संगा दुखी सदमिथिया कहत कीर्तनंदक का तुरही पया नानक जोत सभावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पे जाए संगे दुखी को दरगह मिले सजाए संगा दुखी सदा सह काई है संगा दुखी ना मरे ना जीवाई है संगे दुखी की पूजना आशा संगा दुखी उठ चले निराशा संगा दुख ना तृष्टा कोए जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कट तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तसे ते आवो सास गिरास

राष्ट्रपति टूटी घाटन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे दस्ते भ्रता कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप।

सीपे सच अष्टपदी चरण सात सत प्रसनहार पूजा सात सत सेवदार दर्शन सात सत पेखनहार नाम सात सत आवनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत पर भगता सुरत सत सत जा सुनता बुजनार को सा सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सा सुर हृदय जन मानिया करण कराम तिल मूल बछानिया जागे हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस मन प्रगटाया पैथे निर्भोय बसाना जिते उपजा तस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाही तागो भिन्ना गहना।

प्रभु का सेवक नाम गहरंग, सेवक प्रपरण हारा, सेवक ही राखे निरंकार, सो सेवक जिस दया प्रभु धारा है, नानक सो सेवक साथ साथ संभार है, अपने जन का पर्दा ढाक है, अपने सेवक की सरबर राख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राख है, ताकि गदमित कोय ना राख है, प्रभु के सेवक काओ को ना पहुँचाए, प्रभु के सेवक पूछते उच्चे, जो प्रभु ने सेवा लाया, नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया, निकी कीरी में कल राख है, भस्म कराए लश्कर कोट लाख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख देख रहात, मानस जतन करत बात, तिसके कर्तव्य व्यर्थे जात, मारे ना राखे अवरना कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काय सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभु राख बिड़ाणी, बारंग बार बार प्रभु जपिया, पी अमृत मन तंत्र पिया, नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिसके शब्द नाही दृष्ट आया, नाम तन नाम रूप रंग, नामो शुक्र नाम का संग, नाम राजो जंत्र बताने, मंदर नामे नाम समाने, उठत बैठ सोबत नाम, कब नानक जन कह सतकाम, बोलो जस जे बादन रात, प्रभ ने जन कीनी दात, करे भगतात्म कह चाहे, प्रभ अपने स्यो रहे समाए, जो होवा होव सो जाने, प्रभ ने गाओ कम शाने, तिसकी मैं माँ कौन बखाना, तिसका गुण का एक ना जाना, आठ पैर प्रभ से हजूरे,

राष्ट्रपति संजनामल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल अरद में उरतारो कर्ण कारण सुप्रभ समरथ दृढ़कर गह नाम अरवथ ए तन संचो हो वो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता मैं सो तन हर से बाते पाम जिस सुख को नित बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुग पावी रोग ना जाहे रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध हर के नाये दैत्य स्थावत आ बैठाए ताको बिघन न लागे कोय जाके हृदय बसे पर जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तितकर जाए बसे बनासी कहो नान काटी जम फांसी ताद विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म गावे उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छुट नहारे सिमरत सास्त वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संगला चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता इंते कह तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इंते कह कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी जिन दिए तुझ बुझे ना बेगाना नाम मिसार नानक पछताना गुर की मातु ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के गिल भग जाहे आप जपो अभ्रह नाम जपाव सुंत कहत रहत गद भाव सार पुज सतर को नाओ सह सुभाए नान गुण गाव गुण गाव त्रि उतर समैर बिन सजाए होमे बिख फैल होए अजंद बस सुखनार सास गिरासर नाम समार शाड सियालम सगरी मना सास संग पावे साज तना हर पुंजी संज करो व्यवहार यहाँ सुख दरगाह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सारा एक सिमर एको मन आहे एक अजगे गुण गाव अनंत मंदन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आव पूर्ण पूरे प्रभ्याप अनक विस्तार एक दिवय एक राध प्राशत गए मंत्र अंतर एक प्रभराता गुरप्रसाद नानक एक जाता सलोक फेरत फेरत प्रभ आया परया तव शरणाए नानक की प्रभेन्ती अपनी भक्ति लाए अष्टपति जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मरि सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा प्रभ तुम्हें आवो चरण

कोय, जिन चाख्या से चांद्र बताने, पूर्ण ब्रह्मीन पुरख नहीं डोलाने, सो भर परे प्रेम रस रंग बुझे चाओ साध गए संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंधिल बिलाग, बटभागी जपया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक किन्नो सदा निहाल, बंधन काट मुख जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इश्वनी सरदा सब पूरी रब रया, स संग झूरी जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सुख बिसर जय का हल्ला भन है।

जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुध पाई जब सर्वकलापे परवीन तब एद गतेव कहा कहुचीन जब अपने आप आप उतार है तो सगन अपसगन कहा विचार है जे अपन ऊंचा पर नाम नेरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए जेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा शल अशेद अपे समाया उहा किसे व्याप्त माया आपस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जा एक एक, एक भगवंता ते कौन अचिंत किस लागे चिंता जे अपने आप आप तियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा

अनुगेकोपसरया दुजा गय दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुन रहे हार आपे का विस्तार जात सुभाव सृष्ट उपाय अपने पौने लय समाय तुम ते भिन्न नहीं किशो अपन सो सब जगत परोए जागो प्रभु जी आप बुझाए सतनाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सभता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तुस कोय ना मारा सो मुआ जिस मनो में सारा है तिस तज अबर कहाँ को जाए तिस ते अबर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन।

सब जन साधु सब कहत जो जो है सब सब माने करन करा मनहार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन से देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगल उत्पात तिस भावता करे विस्तार तिस भावता एक अंकार अनकला लखी न जाए जिस भावत सिलाए मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर आप

हो किरे कशकरा, आप भला कर तू तत ने की, आपे जाने अपने जी की, आव साज तारी सब साज, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गतमित कहीं ना जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक केहु जान, जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभु सोए, ओ तरवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिसरदा भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस पर सा सब जगत।

अष्टपदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंदर की उतरा चिंद आस नित्या गोतरंग संजना की दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु सा संग अगन सागर तरहु हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित्तवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हरंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नान उतरे तन का साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सवरेन अमृत नाम सास संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुंदर सना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चलाए जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नम निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सकल देवदास सुंदर चतुर्थ का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फल तिजन के मुख भरे गुरु नानक नाम वचन मन सुने यो निधान जपे मन कोए सब जुग में तागीगत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट पराध सासंग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाके मस्तक कर

नय धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन पावे मोह द्वार मन परवारे आधार मन तारे तारे गुरसिख मन नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए

असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार

पीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपाज है, अचूज है, अचांज है,

हैं पवित्राय परथि से अदि से अदृश्य कृष्य भगवती शांत वय प्रसाद कहते के अचज देश है के अभिज भेस है के अगंज कर मैं के अपंज भर मैं के अभिज लोक कह के दित सुख कह के बतूत बरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक बरने के सर्वाय भरने के जगतंग रीति है के शत्रंग क्षत्रि है।

Amisal salame salikhetum dame. Gani mola sikaste he green bar praste he bilandar mkane. Jamin al jamane. Tamijal tamame ruju al dane. Harifal adime rejai karikine. अनेकल त्रांग है पेद है पांग है अजीजल निवाज है गनि मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है तरमुक्त विभूत है परभुक्त प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है पेदी रूप है सुबह तो पराज है सदा सर्वसाज है सुबह तल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूपे नाद स्वरूपे अनंगी नमे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है छेद है छूत है के नरकं प्रनाश है पृथ्वी और प्रवास है।

वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी आप संगतां ने अमृत वेले दवान विच हाजरी भर के गुरबाणी कीर्तन कथा दे लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहब जी रहमत करन, सब दी दर हाजरी प्रवान करन, दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। इत्थे अमृत वेले दवाना दी संपूर्णता है। शामा दे दवाना विच आप जी ने वध तों वध हाजरियां भरनियां। शाम के समागम जो विशेष तौर पर सज रहे हैं, जून 1984 के समूह शहीदों को याद करदिया हो, घलूघारा दिवस मनाद्या हो, सतगुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज उन्होंने शहीदी पुरब मनाद्या हो, शामी 5 बजे तो लैके रात 9:30 बजे तक जो दवान सज रहे हैं। सो आप संगत वो तो वह हाजरी भरिया करो। इस संबंध में ही आने वाले शनिवार 6 जून को जो नगर कीर्तन सैन फ्रांसिस्को विखे होने हैं, आप संगतां नूं प्रबंधकां वल्लों भी बेनती है कि आप जी ने उत्थे वध तों वध संजोग देना, हाजरियां भरनियां जी। इत्थे ही दीवान दी समाप्ति है। हुण भाई साहब जी होणा ने जो समूह शहीदां दी याद विच सहज पाठ आरंभ कीते सन, उन्हां दी संपूर्णता करनी है। जिन्हां संगतां कोल टाइम है आप जी ने हाजरी भर के जाना जी।

एक भगत भगवान जह प्राणी का नाहे मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह जौ सदा स्वान तजत नहीं नित नानक एह

राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरो बै कर ही पंच राग नि संग उचर ही प्रथम भैर भी बेलाबली पुनिया की गाव है बंगली पुन असली की पई बारी ए भैरों की पंचो नारी पंचम हरक साग सुनाव है बंगालू मद माधव गाव है ललत बलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थाप है गुण करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पंचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारु मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक ओ बारा खाओ खट औ पौरा नद गाये अष्ट माल कौशक संगलाये पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठा तान कलोल गायन तार मिलावी ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरस हिरी लै पार जा संगलाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सोहाए सरसवान ओ आहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा ओ कंदरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पंचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गबरी गावै आसावरी तह पातशाह संत भी अलापी श्री राग स्यों पंचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खाष्टम मेघ राग वै गाव पंचो संग बरंगन लाव सोरठ गुण मलारी तुनी पुन गाव आसा गुन गुनी उच्चै सुरसु हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पंचो चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट

दूर कत हो ना जाई, रब रहया सर्वतर मां, मन सदा त्याई, जह जह पिखों तह हजूर।

तीर्थ ना वाजे ते सुभावा विन भाणे के नाए करी जे तीसर ठेव पाई वेखा विन करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जिक गुर की सिख सुनी।

जोर ना जुगती छुटै संसार। जे साथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवे धरती थाप रखी धर्मसाल तिसुज जी जुगत कै रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमे करमे होए विचार सच्चा आव सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवे निशान। कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए। धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म अज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश।

ऐसा कोय सेवो सहब समराथे अपना पंथ सुहेला आगे पंथ सहेले जावो ता फल पावो आगे मिले वडाई भेटे स्यों जावो सच सुमावो ता पत लेखे पाई महली जाय पावो खसमे पावो रंग स्यों रलियां माणे मरन ना मंदा लोका आखी है जे कोई मर जाने मरण मुनसा सूर्या हक है जे होए मरण परवानो सूरे से आगे आखी है दरगे पावे साची मानो दरगे मान पावे पात स्यों जावे आगे दुख न लागे कार्य आवे ता फल पावे जित सेवै पाव भाग

नानक जुग जुग जान सजाना रूवै सच समाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों तां गावो हरि केरा मन जनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरा दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सुवारना सबना गलां समरा स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है घर तां तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा है साचा नाम मेरा आधार साच नाम उदार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां ए वडिआईआं कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूध तुद वस कीते काल कंट कुमारिया